तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं।

बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

कमाल है। और सरोज और जय पनारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरसे के बाद। पहले हमेशा इनका जो मैसेज हुआ करता था सबसे पहले आ जाया करता था और बड़ी अच्छी जानकारी जय पनारा और सरोज के पास हुआ करती थी, होती है लेकिन हम तक नहीं पहुंचती थी। आज के बाद जय और सरोज पनारा, उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे। और किसी ने कहा स्वीट स्वीट स्वीट सॉन्ग, इतने प्यारे गाने, चंद्रिका वासंत गोसाई एंजॉय कर रही हैं गीता दत्त को। दिस टाइम द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज राइट, ये कहा है सोनल मोदा ने। वाकई कहती ये ना कहो कि बाद में मैं करूँगा, हाँ ये काम अच्छा है सही है जायज़ है, लेकिन बाद में कहती है नहीं अभी करो। एम एल विश्वकर्मा, डू नॉट फॉरगेट कंपस वॉज इन्वेंटेड बिफोर द क्लॉक, द कंपस वॉज इन्वेंटेड बिकॉज डायरेक्शन इज मोस्ट मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइम, जो सिमत है डायरेक्शन समझ वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो कंपस से आपको मिलती है, वक्त से भी ज़्यादा कीमती सिमत होती है। एम एल वंडरफुल, बहुत खूब।

0: तो अश्विन दोषी आज आपके लिए ट्रीट है
1: बड़ी एंड आई मस्ट से बिग थैंक यू टू यू प्रवीण जी ये गीता देव की महफिल में हम शामिल हैं
0: क्या बात
1: और बस बस थैंक यू प्रवीण जी ये रियली मुझे एक गिफ्ट मिल गई
0: वाह क्या बात है बहुत अच्छे और आप आज आपने कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं करनी बस
1: बस तीन घंटा ये गीता देव के गाने सुने
0: जी बिल्कुल अच्छा तो ये अभी जो मैंने सुनाया
1: ये
0: ठंडी हवा
1: मिस्टर फिफ्टी फाइव का गाना था ये
0: अच्छा ये फिल्म सारे गाने मशहूर हो गए है ना
1: हो गई प्रवीण जी अभिनय का म्यूजिक और मजरू सुल्तानपुरी का गीत लिखे लिरिक्स
0: क्या बात
1: और पर्दे पे मधुबाला गा रही है
0: अच्छा मधुबाला फिर तो हमें इसको ज्यादा सुनना चाहिए
1: और क्या जाए या फिल्म हिट हुई थी परिजन और यस ये फिल्म गुरुदत्त की ही थी और गुरुदत्त भी उसमें हीरो के पार्ट प्ले किया था और मोस्ट और नोटवर्दी एक्टिंग थी ललिता पवार की एज ए वेरी डोमिनेटिंग आंट ऑफ मधुबाला
0: ओके ओके
1: यस लेकिन इट वाज इन ए कॉमेडी परिणी
0: अच्छा इट वाज अ काइंड ऑफ कॉमेडी अदरवाइज तो ये ईवल औरत का बड़ा अच्छा रोल होता था
1: यस बट लेकिन दिस फिल्म वाज रियली एंटरटेनिंग एंड ये गाना तो सुपर है परिणी
0: और ये वो जमाना था इंग्लिश के टाइटल्स दे रहे थे फिल्मों को
1: Yes, Mr.
0: and Mrs. 55.
1: Yeah, released
0: in
1: 1955.
0: Okay.
1: Okay.
0: तो समय बात कर रहे थे अश्विन दोषी के साथ और साथ ही मैसेज आ गया है किन का रूपल का नहीं कहते हैं कि परवीन जी आई एम आस्किंग चिराग पटेल कहाँ है वाकई कैराटीना से उनका ताल्लुक कहाँ गए हैं मुझे मैं जो गेस कर रही हूँ हो सकता है कि उनका कोई मैसेज मैंने ना पढ़ा हो समिन अब देखें आप अगर 40-50 मैसेजेस मैं हमेशा आपको कहती हूँ 45 से ऊपर होते हैं तो एक एक अगर लिसनर मुझे दो तीन भी मैसेजेस करता है तो 100 से ज़्यादा हैं अगर आपका मैंने ना पढ़ा हो तो आप खफा हो गए हैं तो बड़े अफसोस की बात है खफा नहीं होना चाहिए ये मैं गेस कर रही हूँ रूपल के एनीवे और इनको अश्विन जी इज़ वेरी हैप्पी टुडे रूपल कह रही हैं जी बिल्कुल आपने देखा ना कितने खुश नज़र आ रहे थे उनकी आवाज़ में थी खुशी खुदा सबको खुश रखे जो बेमिसाल में है अच्छा अब चलते हैं किसके पास जबीन हिरानी what a beautiful start of our program always inspiring and informative and of course a fantastic selection of beautiful songs but Geeta Dutt थी ऐसी क्या करें इतने यादगार नगमे वो सुना के गई हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है
2: गीता काली हवा ये गाना मिस्टर एंड मिसेस 55 की मूवी का है जिसको गीता दत्त और शमशाद बेगम ने गाया है जिसको मजू सुल्तानपुरी ने लिखा है और जिसकी धुन ओपी नायर ने बनाई है गाना अच्छा लगा
0: जी बिल्कुल बहुत ही अच्छा था गाना और आगे रसिला आई है रसिला आपको आज गीता दत्त यस शी इज रिटन समथिंग अबाउट गीता दत्त ये बड़ी अच्छी बात है सुपर चॉइस टुडे आपने कहा है रसिला शी वाज अ लेजेंडरी बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर रिनाउंड फॉर हर इमोटिव वेलवेटी वॉइस एंड वर्सटिलिटी अक्रॉस जॉनर्स इसका मतलब वो हर तरह के गाने गा सकती थी हालांकि मैंने उनको कोई गजल गाते हुए नहीं देखा सुना हो सकता है और कहते हैं बट शी सैंग शी वॉज वेरी वर्सटाइल Over a 25-year career, she recorded 1,200 songs, seamlessly transitioning from soulful bhajans. Achha, kehte hain ki aagaaz inhone bhajans ke saath shuru kiya. And آف کورس آپ نے کہا میلنکولک میلڈیز سنجیدہ یعنی سیڈ گانے جو وہ گا کر گئی ہیں کمال کر دیا ہے ٹو ویسٹرن انسپائرڈ کیبرے نمبرز ایز ویل کہتے ہیں کہ جیسے کلب نمبرز تھے وہ بھی اتنی مہارت سے گا کر گئی ہیں رسیلہ سو گریٹفل ٹو یو

0: चले माँ।
1: अरे जा जा जा जा।
0: अरे सुन सुन सुन सुन।
1: जा जा जा।
2: और अब देखते हैं कि अर्जेंटीना के साथ क्या हुआ है। समिन, कल का जो फुटबॉल का मैच था, अर्जेंटीना ने इंग्लैंड के वर्ल्ड कप जीतने के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। वो आपने देखा, आखिरी मरहले में समिन दो गोल्स बनाकर अर्जेंटीना ने फतेह अपने नाम कर ली। इंग्लैंड 1966 के बाद पहली बार सेमीफाइनल में पहुंच जाता। 1966 के बाद, मगर 85th मिनट और 92nd मिनट में सब बदल गया। जीत का पल्ला हाथ से छूट गया। लेकिन समय हार में या जीत में, जो इंग्लैंड के लोग हैं, ये जो ब्रिटिश लोग हैं, ये हमेशा यही करते हैं जो शहजादे विलियम ने कहा है। शहजादा विलियम बहुत डिसअपॉइंटेड था, लेकिन उसने सलाह दी है पूरे मुल्क को, क्योंकि वो अब आगे चलकर वो राजा बनेंगे। तो शाह ने कहा है, बनने वाले शाह ने, कि अपना सर ऊंचा रखिए। समझे, इसी तरह करते करते उन्होंने सारी दुनिया फतेह कर ली थी। सर को ऊंचा रखना है, दूसरों को हराना है, होल्ड योर हेड हाई। और समझे, वैसे भी शहजादे विलियम फुटबॉल एसोसिएशन जो है उसके बड़े हैं। बाबू

0: कह रही हैं कि अगर किसी के साथ अनबन हो जाए तो देखो कोई और दामन पकड़ लेना ये अच्छी सलाह देकर गए गीता दत्त। अब चलते हैं रीता। रीता आपने कहा ओह माय गॉड थैंक यू सो मच आई लव गीता दत्त आई एम सो हैप्पी। आप एंजॉय करते जाइएगा जितने भी गाने हो सके हम उनको इंक्लूड करेंगे।
1: अरविंद जी मेरी गलती से फ़ोन कट गया था और मैं ये बता रही थी कि मैं कल ही सोच रही थी कि आपको बोलूं कि इकबाल बानो शमशाद बेगम या गीता दत्त को सुनाने की के लिए मैं रिक्वेस्ट करूं तो आपने तो पूरा फीचर ही कर दिया गीता दत्त के ऊपर बस मज़ा आ गया। मैं तो बहुत धन्यवाद देती हूं आपको इतना बहुत पसंद है मुझे उनके गाने और अब तो देखो और अभी आपने वो जो गाना सुना है उसमें शमशाद बेगम भी थी और गीता दत्त भी थी मज़ा आ गया बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और मंजुला वो दोनों आपकी फेवरेट हैं शमशाद बेगम भी और ऑफ कोर्स तो आज तो आपकी तमाम फरमाइशें पूरी हो जाएंगी। साथ हैं मिस्टर ML Vishwakarma yesterday Argentina beat England by 2 goals. Now the final FIFA World Cup will be between Spain and Argentina. Seven Argentina तो मुझे लग रहा है कि कमाल कर रहे हैं। अच्छा अब देखते हैं सलमा अहमद। परवीन जी I would like to share some information and insight about a lady Eileen Levine, a New Yorker currently aged 101 who still works as a journalist to this day and is reported to papers in Massachusetts. She has worked at New York Times, written radio scripts, served as an editor in Better Times. Now, 101 and a half years, Levine still leads a robust but a slower life. सलमा ये तो आपने बताकर क्या इंस्पायर किया है लोगों को। आप कहती हैं कि 101 साल की पत्रकारा हैं जर्नलिस्ट आज तक वो काम करती हैं ओके ये है कि ज़रा सी रफ्तार कम हो गई है लेकिन काम चल रहा है 101 साल पार कर गई हैं। और समझना आप अमरीकी औरतों के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये गलत हो सकती है इन्फॉर्मेशन झूठ हो सकता है नहीं अनफाउंडेड नहीं इनके पास रिकॉर्ड्स हैं सदियों के। शी रेकन्स दैट शी मेंटेन्स अ रूटीन दैट एंगेजेस हर माइंड रेगुलरली शी पॉइंट्स आउट दैट शी यूजेस अ वॉकर डजंट स्विम एनीमोर बट टेक्स एन ओकेजनल वॉक एंड शी रेकन्स दैट हर माइंड she says is where her strength is. समझ ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपके दिमाग को आपने एक्टिव रखना है मुतहर्रिक रखना है ताकि ये ना सो जाए इसकी रफ्तार कम हो जाएगी पर रहेगा बिल्कुल शार्प अगर आप इसे इस्तेमाल करते रहते हैं तो। अगले मैसेजेस थोड़ी देर के बाद क्योंकि ब्रेक का वक्त है।
2: East FM, Kenya's premier Asian mix. We unlocked Gavaa for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
3: We've got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: दोनों शर्मा रहे हैं समिन, मर्द भी शर्मा रहा है औरत भी, तुम ही कहो तुम ही कहो, न जाने कौन ज्यादा शर्मा रहा है। खैर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद कहा है रंजन विनोद ने, क्योंकि आप भी बहुत बड़ी फैन हैं गीता दत्त की। और यहाँ पर हैं जो वो हैं कल्पना कुलकर्णी, कल्पना कुलकर्णी, फ्रांस इज नॉट इन द फाइनल्स बट मबापे इज स्टिल अ कंटेंडर फॉर द गोल्डन बूट, ये भी मिलेगा समिन, सोने का जूता सर पे मार, नहीं सर पे नहीं मारेंगे देंगे। बोथ मेसी एंड मबापे आर टाइड एट 8 गोल्स, 8-8 गोल्स कर चुके हैं मेसी और मबापे। बहुत खूब, थैंक यू सो मच फॉर दैट इन्फो कल्पना। और नीला शेद, गीता दत्त इज माय फेवरेट सिंगर आफ्टर लिसनिंग टू हर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स बिकॉज ऑफ योर विशेस आई एम बेटर टुडे। नीला खुदा आपको हमेशा, वो कहते हैं ना कि अपने दिमाग से काम लें, बस दिमाग में डालें गीता दत्त को, उनके गानों को गाएं साथ साथ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और इंफॉर्मेशन भी लेते रहेंगे। प्यार अली
1: जी, प्लीज गीता दत्त का बादमान का गायन कैसे कोई जिए सुनाएंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा।
0: हाँ मुझे याद है कैसे कोई जिए, ये पहले भी आपने कहा था, फरमाइश की थी कैसे कोई जिए, बहुत ही ब्यूटीफुल गाया हुआ है। ओके करती हूँ। दिनेश पोपट हैं सिडकप में लंदन में। इट्स वंडरफुल स्टार्ट ऑफ द शो विद द प्लेलिस्ट ऑफ माय चॉइस। बिल्कुल दिनेश पोपट को ये गाने, मुझे पता है सदाबहार गाने बहुत पसंद है, और ऐसे अजीम फनकार जैसे कि गीता दत्त।

और यासर अपना फीचर जो उन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है यासर ने टुडे इन हिस्ट्री 1945 फर्स्ट टेस्ट डेटोनेशन ऑफ एन एटॉमिक बॉम्ब अकर्स एट ट्रिनिटी साइट अलामोगोर्डो न्यू मेक्सिको एज पार्ट ऑफ द यूएस मैनहट्टन प्रोजेक्ट देखे एटॉमिक बॉम्ब डेटोनेशन मतलब कि उन्होंने इसको किया डेटोनेट 1945 में जमीन तब से इनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं ओके आपने कहा ये अमेरिका में हुआ था और सुरेखा सिकरी पासिस अवे एज्ड 76 इन 2021 सुरेखा सिकरी A three-time National Film Award winner, she was celebrating for her towering performance. She was celebrated for her towering performances in films like Mamo, Budhai Ho, Badhai Ho, Mamo, huh? And the popular television drama Balika Vadhu. Achha, inka Surekha Sikri ka mujhe nahi pata, lekin agar kisi ko pata hai, wo izafa kar sakte hain hamari knowledge mein. और शोभना और दिनेश ने कहा है देखो द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट जस्ट टू बी हैप्पी इट्स टू बी यूजफुल टू बी ऑनरेबल टू बी कंपैशनेट टू हैव इट मेक अ डिफरेंस दैट यू हैव लिव्ड एंड लिव्ड वेल कहते हैं ऐसी जिंदगी जियो अच्छी जिंदगी आखिर में आप कह सको मैंने बहुत अच्छी जिंदगी जी है इसलिए कि आप दूसरों के काम आए हैं

लेकिन इसमें तो गीता दत्त नहीं है। खैर, हेमंत कुमार की आवाज़ आपको सुनाई गई, आज हम गीता दत्त पे फीचर कर रहे हैं। अब देखते हैं जबीन हिरानी, टाइम पावर मनी एंड बॉडी में नॉट कोऑपरेट एवरी टाइम इन लाइफ बट गुड नेचर गुड अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअल पाथ एंड ट्रू स्पिरिट विल ऑलवेज कोऑपरेट। ओके, थैंक यू। कृष्ण सरोवर कहते हैं ये सुरेखा सिकरी उम्दा एक्ट्रेस थी, बधाई हो में तो इसने कमाल ही कर दी। कहते हैं कि कुछ ड्रामों में भी आई हैं और फिल्मों में भी।

0: अंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शकर शकर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.
1: Yeah. Heartbeat.

चौंग इस सारी रात ब्लिंक फॉर ईस्ट एफएम के नियस प्रमेय जो मेक्स दिस इज द सिटी लाइट्स विद विशाल और हम बात कर रहे हैं अबाउट एम्बैरेसिंग चाइल्डहुड मोमेंट्स. सो चिल्ड्रन आर क्रिएटिव अंटिल देयर लाइव्स फॉल अपार्ट इन स्पेक्टेक्युलर फैशन. रिमेंबर ट्राइंग टू ब्लेम योर लिटिल ब्रदर, ट्राइंग टू ब्लेम योर पेट, द विंड और इवन एन इमेजिनरी फ्रेंड फॉर समथिंग यू क्लियरली डिड. यू ब्रेक अ प्लेट, डिनाई एवरीथिंग, देन योर मम आस्क्स, then why are your footprints leading straight to the kitchen? Suddenly, you're an amateur detective trying to solve your own crime. Childhood taught us one thing. Parents somehow knew everything before we even opened our mouth. And tell me your most amazing memories, your childhood memories. Could be happy memories, could be sad memories, could be embarrassing memories. Share that with me on 0701-106-106. And time right now for the Mixer Beat Challenge. These are the two songs I am looking for today.